बिथ्रदश जय कर्म जान साधु का साधु बतान बित्रो दृष्ट जय कर्म जान पुस्तक संपूर्ण।

0: महाराज सानू चरण धूड़ी मिल जावे। साध संगत जी, सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्रथाए बचन ने ना तीर्थ उद्यम सतगुरु सतगुरु जी ने तीर्था दे उधार वास्ते उद्यम किया सी। जदों ब्राह्मणा ने शिकायतां लाइयां बादशाह दे कोल, हे बादशाह अकबर, सतगुरु गुरु अमरदास जी ने नवी मर्यादा चला दिती है, ना ये तीर्थ यात्रा करते ने, ना तीर्थ इशनान करते ने, ना वेदा की विधि मनते ने। महाराज एदा तो वेदा की मर्यादा खत्म ही हो जाएगी। तो फिर अकबर ने बेनती की सतगुरु सचे पातशाह, ये ब्राह्मण बहुते क्रोधित होए फिरते ने, यह नेता प्रति शिकायत ला के आ जाते ने, शिकायत लै करके महाराज नेता प्रति दरखास्त लैके आ जाते ने, नेता प्रति आप जी के पुकारू होके आ जाते ने, इन्ह के गुस्से आप ही शांत करो। तो श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने विचारिया, एक तो ब्राह्मणा का क्रोध जिहड़ा नेता प्रति गुस्से तपते फिरते ने, इन्हों के हिरदे भी ठंडे हो जाएंगे, तो नाले तीर्थ पए पुकारते ने, उन्होंने जेडे कलयुगी जीवों के पाप भरे हुए ने, जाके उन्हों की निवृत्ति करिए। तीर्थां की पुकार सुन के बादशाह अकबर की बेनती मन के सतगुरु गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने उद्यम किया, तो साध संगत जी तीर्थां नूं भी चरण धूड़ दे के तिन्हां दे पापां की निवृत्ति की। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी तीर्थां ते गए ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते पतत पावन ने, पापिया का उद्धार करन वाले ने, फिर तीर्थां ते क्यों गए? जब ही जात त्रिबेणी भए, पुन दान दिन करत बिताए, क्यों गए जी त्रिबेणी प्रयागराज ते? सतगुरु जी का इतिहास पढ़ के देख लो, सतगुरु जी ने जा करके त्रिबेणी प्रयागराज का कोई पूजन नहीं किया, बल्कि सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी के माता जी परम पूजनीक सन्मान योग माता नानकी जी वचन करना करते ने, हे जगत गुरु सपुत्र जी, इत्थे त्रिबेणी प्रयागराज ते आए हैं, इत्थे गंगा जमुना गोदावरी आकर के संगम विच मिलदियां ने, इत्थे दे नौण दा महात्म सुनिया, वेदा पुराणा शास्त्रां ने बड़ा कथन किया है कि असीं वी जा करके गंगा विच ना आईए। ते सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने वचन किया सी, माता जी तुहानू गंगा ते जाण दी की लोड़ है, तुसीं ते इन्ने पावन पवित्र हो के गंगा आप इशनान कराउण वास्ते तुहाडे चरण परसन वास्ते इत्थे आवेगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, घर दे विचों इट तां पुटो, जदों इट पुटी थाउं पुटिया ते साध संगत जी गंगा प्रगट हो आई। इस प्रकार माता जी इशनान करदे ने ते गंगा नूं भी पवित्र भाव बख्शदे ने। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे तीजे महल परम पूजनीक जगत माता माता नानकी जी, सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे सन्मान योग माता जी, सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे दादी माता जी, ऐसे पवित्र ने कि गंगा नेता प्रति चरण परसन वास्ते आया करती सी ते माता जी का इशनान करवाया करती सी। इस प्रकार सतगुरु जी वचन करना करते ने, भाई इस जेड़े सारे तीर्थ ने उद्यम करके बेनतियां करते ने, उद्यम करते ने, महाराज कृपालता करो, कलयुग दे पापी जीवां दे पाप कर्मा दे नाल असी भरे पए हाँ, भेजो कोई अपना साधु जिस दी चरण धूड़ दे नाल असी पवित्र हो जाइए। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी वचन करना करते ने, भाई 68 तीर्थां दा इशनान नाम दा जापी है, जिसने मज्जन नाई नाम नू जप लिया ना, 68 तीर्थां दे पुरबियां दा इशनान दा महात्म घरे बैठिया ते इस नू मिल जांदा है। ऐसे प्रकार
1: 68 तीरथ 68 मज्जन नाई,
0: सतगुरु जी वचन करना करते ने, भाई मज्जन नाई जेडे अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, हिरदे दे अंदर ही नाम रूपी जल रूपी तीर्थ दे अंदर नेता प्रति इशनान करते ने ना, तीर्थ 68 तीर्थ उन्हां दे पूजन वास्ते उन्हां दे चरण परसन वास्ते आउंदे हन।
1: संगत की धूर परी उड नेत्री,
0: एक नेमी ब्राह्मण सी गंगा जी दे इशनान करन वास्ते हर साल जाया करदा सी, उसने निजम बनाया सी जिसने गंगा दा इशनान कीता होवे उसदे हत्थों ही भोजन प्रसादा छकना, किसे दूजे दे हत्थों भोजन प्रसादा नहीं सी छकदा। संकल्प दे नाल साध संगत जी जदों गया गंगा इशनान वास्ते, जिथे भी किते रात पै जांदी ठहरदा, भोजन प्रसादे की तलब लगती है, भुख लगती है, कोई भोजन प्रसादा छकाउण लगता है, ब्राह्मण जान के सेवा कर लगता, पहला पुछदा गंगा जी का इशनान किया है, जे ते इशनान किया हो भोजन छकदा है, नहीं तो उसके हथों नहीं फिर दूजे हथों छकदा जिसने इशनान किया हो। चलद्या चलद्या गंगा तो चार कोह की दूरी पर रह गया, उत्थे रात्रि का समा हो गया, साधु महात्मा का आश्रम तक

दाता चतर चक्र वर्ते चतार चक्र भूते स्वयंभव समं सर्वदा सृजुते दुकाल प्रणासे दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते देख तेग फतेह नसरत बेतरंग आपतज आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार मित्र दरबारा सच खंड से निरंकारा लक्ष्मी कड़े तुम्हारे दरबार।

जय गुरु गोविंद अंतर्जामि सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी के पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दियां हजरिया पर देवे कीर्तन दे सत्कार जो संगताल बेंत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीते सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जीवन बसना दे रुकता बसनिया सामने सा संपूर्ण करनी यात्रा।

रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा सारे सती साजे।

वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांधर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस्थित बद तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की जौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण कित वेद अवरान कित सिमृत समूहन के होए हुए बितय है। मोन दीव दार कित्य सुनि कुमार कित्य अंसा अवतार कित्य काल बस भय है। बीर पिकाबर कित्य गण न परत भूमि हित हुए के बेर भूमि ही मिलाय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल जो पिकाड़त अनेक दंड सोत न दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रोगी जो पे डार्यो रहे उर्द मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आख को चरैया फल फूल को भजैया सदा बान को ब्रह्मैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बचैया बोल बूझ लीज जो सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठोर वास कर काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांग कहूँ जो किया बरागी बन का बहू संन्यास भेष बन कह दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई कामना दीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोरटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन किस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापना तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गतराण की बरत कर पत

करता करीम सोई राज कर रहीम ओई दूसरो न वेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब एक गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज होई मान सब एक पे अनेको भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बाण खाक बा

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूरे समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच होय सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज केते कब्रत अच होय पचा।

न पात न सत्र न मित्र सुभूत भविख्य भवान यचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेहं न लोभं न चोभंग भूतंग भेगं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वया जो हं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं।

जच विद्या धरे माधवी हो कहूं राज सिंह कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट किए पृष्ठ किए रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं गाव रूपं कहूं चेष्टा चार

कहूँ गान की तंग कहूँ मलेज भाख्या कहूँ बेदरी तंग कहूँ नृत विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारडू कूड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हूँ कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभाव कहूँ छल झाला दरे छत्रधारी कहूँ।

अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय

गई पवन हार कई गर्त कूट मृत को हार कई गर्त साक पत्र बछ नहीं तब देव हो बल प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न हो।

कई तीरथ तीरथ भरमत सुभरम दई यगन होत्र कई देव करम दई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र दुचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ गर्द ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ गर्द जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई।

कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवदास बायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान।

नृपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उत भुजंगीय देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न प्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जंप है किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक बांध गणंग भूत भवेख भवान दुवंग जय अंड से तय जे रजंग रज भूमा काल पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जा।

जिह राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण।

लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान पराय। जे फोपट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा नित को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है, अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म फेक है, न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है, अधिक सेघ फेक है सदैव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है विशेष विश्वभरण है, जिमी जमार के विगे सदैव करम परम है, अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदैव सर्वठौर में विशेष आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में।

नने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अवेग है बलि रूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध गर्व है न जात है न पात है न

रूप राग नारेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिक सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखेर म्यो जय चक्र चिहन न चित्र आद देवो दार मूर्त अगाद नाथ अनंत आद अंत न जानिए अब खाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के सनंदन पाव ही न सेब जाच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुखचार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाद तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न गीन सर्व ठोर रहे ओ विराज राज राज प्रवीण जस गंधर्व देव दानो न भ्रम क्षत्रिय माहे वैष्णव के विखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी लभी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम का अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद अवतार के दर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस पर नयनेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सवै सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त सके महाकव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहियो सबो मेरा नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेव देव दानव मूढ़ मानो जच न जान जेब भूत बाप भवान।

देव देव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार भूमकाज लेथले मेहमानीय जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भोक्ता सर्व जोक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व नेत सर्व के निज भाम सर्व भोक्ता सर्व जोक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन

आत्मा स्वरूप है, कहाँ से जिसको विचार, कौन धर्म को कर्म है, कहो सकल विस्तार दोहरा, कह जीतव कह मरण है, कह अंसुर कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता, कहाँ तरक अव तरक दोहरा, को निंदा जिस है कवन।

अष्टाय चमके भूखण दमके अतिथित चमके फुंक फनंग जय जय उसी मैखा सुरमर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे खंडन खून खिते दाम रीत मंकण दुजा परंकण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय होशी मै काजुर मर्दन भूमा का सल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते।

सहती सन्नाहन अष्ट प्रभाहन बोल निवाहन तेज तुलन जय जय होसी महासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलं चाचर चमकारं छिछुरहारण धूम धुंगारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय होसी महासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमन कर्ण सहस्र जमन कर्ण फणियर फंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट

संकटे निवारण धम धारण तेज प्रकार कण तुंत तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी सहस्र प्रकार खन आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे गर्क सा कुठारे नरक निवारे अधम धारे तूर बुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन।

घंट का बिराजे रुण झुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हो शिव खा सुन मर्दन चंड चक्रदन आत कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर पिते दुम राज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती सत्र मतंती दुष्ट व्रत

सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दोष निवारण दोख हरे जय जय ओसी मैं का सुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्टि करे दामनी प्रकाशे उन्तर न्यासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोलने बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मा खातुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत

कारण करीली गर्भ कहीली जोत जतीली धुंद मते अष्टायुध चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुकी दबंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से मासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण वत दो दारण एक बटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे।

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार बिपरखन दुर्जन धरखन तुल्लमरखन धरम दुजे धूमराज विदुन संसरूणत चुन संसो।

साधुर अंत दुख दो रहत जिह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साधु सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता तुरंत अद्वै नाव सब रोग शोक तेरह रूप अनभय काल अच्छे स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दो।

ऊर्धं बिरहत सिद्धं स्वरूप बुद्धं कपाल युद्धं अनूप जय रूप रेग नहिरंग राग अंछिज तेज अनभिजदा जल दल मही बवंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करें नित संतु बार गनी मन गारे पच्छ पसो नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपारे पोगत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापद भेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक राज करो रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग वेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद से किन श्री पदमापद पाए आद अनंत गादत वैक्स भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन नातम आबाद छिद्र छह है लोगन के करता हरता जल मै सर में भरता ब्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मा पते है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह छह है जान को दे जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम रे सुध सुंदर श्री पदमापत ले है रोगंते और सोकंते जल जोगंते वो बात बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ पेट ही के बट बीच बचावे जाच भुजंग सोदान देव भे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिरन्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब भूम लगायो वेद कते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो दय को मन में जय को अमितूज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब है बचहारे वेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध वेगत वेख जप्यो तिन्हि कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिर कर भेस तो बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुकारे दीन दयाल काल बजे बिना अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया कटैया जम जाल है जोध के जतैया विरोध के मिटैया।

पूर्वी न बार बावे हिंगुला हिमालय तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मानसो तपस्या कर दृढ़ तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिर हंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेल फिर भंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस ने अब देव दे दे आए दुख देह के दलत है जिने तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है देव देवदान।

काल हों के काल हैं के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता के वासी हैं। जो कहो को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी हैं। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हों को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के काम

हिंगुला हिमाल गावै बसी हल पिधावे पूर्वी नवार पावै सदय नस है देवन को देव महादेव हुंक देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हुंक देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हुंक साजा महाजोग हुंक जोग है धरैया द्रोम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है सिद्धता के साथी है के काल हुंक काल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के गोल के हंस निश सी हरुम ही रसि हुसन बद गंगा कैसी दार चली सत सिंध रूल के पारसी पल्लव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगा बादनी के रही झूल के जम्पासी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान से बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है फकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र ते अतापी नाथ कीरत

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हरजन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित।

जन जुग में सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भाव जिन हर निर्भाव त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

के संभाले सपना जिन करते कन्ना किया चिंता भे कनेता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिद ब

शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्द एक शब्दं जे को जाने भे नानक ताका दास है। सोई निरंजन दो महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ते आत्मा।